हम में से बहुत सारे लोग पीपल प्लीजर्स होते हैं, किसी को ना नहीं बोल पाते, दोस्तों के साथ पार्टी पर जाना हो या एक्स्ट्रा ऑफिस वर्क करना हो, हाँ बोल देते हैं और बाद में खुद ही रिग्रेट करते हैं कि यार मेरा मन नहीं था, तब मैं क्यों गई इस पार्टी पर। अपनी मेंटल पीस के लिए नो बोलना सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, और जब तक आप नो नहीं कहना सीखेंगे आप इसी तरह से परेशान होते रहेंगे और लोग आपको परेशान करते रहेंगे। तो हर जगह अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। एक और ट्रैक सोदाक्षी के साथ सुनिए अभी, और सुनते रहिए ठापेंस, आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

जी हाँ, सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी पर। और घर में जब हम देर से उठते हैं तो मम्मी का ताना और पापा का वो हमारे जमाने में वाला जो मोनोलॉग है ये हमें सुनना पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हुआ करती थी भाई हमारी जनरेशन के साथ। तो हम अक्सर इरिटेट हो जाते हैं, पर क्या हमने कभी उनकी तरफ से सोचा है? उनका जताने का तरीका अलग होता है। वो बेशक हमें डांटते हैं, हमें लाइफ के लेसन सिखाते रहते हैं, लेकिन मम्मी की डांट में केयर और पापा की स्ट्रिक्टनेस में प्रोटेक्शन होता है। उनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय उनके प्यार को समझना बहुत जरूरी है। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सदाक्षी के साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.0।

शर्मा जी के बेटे को देखो, ये लाइन हम सबने सुनी है, पेरेंट्स जब हमारा किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो लगता है उन्हें हम पर प्राउड नहीं है, पर सच पता है क्या है, पेरेंट डर से ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, उनसे लड़ने की जगह उन्हें शांति से अपना प्लान समझा दीजिए। जब आप उन्हें अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर भी तो बन जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी को सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस।

बात करते हैं सिबलिंग्स की भाई आज इट हैपेंस में। तो टीवी के रिमोट के लिए लड़ना, एक दूसरे के सीक्रेट्स चुरा के उन्हें ब्लैकमेल करना, पर जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तो सबसे पहले साथ खड़े होना, यही तो है ना सिबलिंग वाला लव। तो आज ही अपने भाई या बहन को एक रैंडम टेक्स्ट भेजिए और उन्हें बताइए कि तू जैसा भी है ठीक ही है और मेरा काम चला लूंगा यार, मुझे तुझसे बेटर सिबलिंग तो नहीं मिल सकता। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ इसी बात पर, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

इट हैपेंस. जी हाँ, इसी सफर को आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. मैंने देखा यार, कुछ लोग ना बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ उनके पास नहीं होती है, तमीज़. हाँ, ये जो वर्ड है तमीज़, ये लोगों को लगता है कि कैसे बोल रही है लड़की, लेकिन देखिए ये सच बात है. बात करने का सलीका अगर आपको नहीं है, बात करने की तमीज़ अगर आपको नहीं है, अगर आपको सामने वाले को कैसे हैंडल करना है इस बात की क्वालिटी आप में नहीं है, तो होंगी आपके पास न जाने कितनी डिग्रियाँ. आप लाइफ में है ना कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर आप कभी एस्टैब्लिश नहीं हो सकते. सो इसलिए आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं, जब आप डिग्रियां हासिल करते हैं या बहुत ग्रोथ करते हैं ज़िंदगी में, तो ये जो तमीज़ वर्ड है इसे सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी कही बातें कभी कभी इतनी कटीली हो जाती हैं कि कोई तीर भी क्या मारेगा, कोई चाकू भी क्या ही हमला करेगा, इतना कड़वा और इतना नुकीला आप बोलते हैं. कुछ लोग होते हैं ना, मतलब लगता है कि यार इसने तो अगर मुंह भी खोला तो फिर पता नहीं क्या ही बोलेगा, तो बात करने से भी लोग उससे डरते हैं. सो ऐसे मत बनिए और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर.

0: energy.
1: Baby ko bas pasand hai.
2: वेल फ्रेंड्स, ये था इट हैपेंस में. आज मेरा आपके साथ एक और बेहतरीन सा साथ, और आज हमने फिर से कुछ जज्बातों को संवारा, कुछ बातों को सजाया, और अपने इस सफर को, अपने इट हैपेंस को आपके और मेरे लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही खास बनाया. तो कल कुछ बातों के साथ, कुछ जज्बातों के साथ, आपके और मेरे किस्से और कहानियों के साथ फिर से मिलूंगी इसी सफर इट हैपेंस में. आज के सफर से अब ले रही हूं विदा, इजाजत. हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग. नमस्कार.

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 107.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आप सी बने हुए हूँ। गल कर रही थी ना मैं देवानंद की मूवी की, तो उन्होंने दिलचस्प गल की गल कर रही थी ना मैं। उस कहानी की दिलचस्प गल यह कि इस फिल्म का एक अंग्रेजी वर्जन भी बनिया जिसनू पर्ल एस बर्क ने लिखा सी, पर देवानंद की सलाह के बावजूद उस विच वहीदा रहमान नू नहीं लिया गया। फिल्म अपने समय तो काफी अगे सी। फिल्म की पॉपुलरिटी का अंदाजा तुसी इस गल तो लगा सकते हो कि रिलीज के 42 साल बाद 2007 इसनू कांस फिल्म फैसटिवल दुबारा दिखाया गया। अवार्ड मामले विच तां गाइड ने इतिहास ही रच दिता सी। गाइड फिल्म फिल्म फेयर के इतिहास विच पहली अजिही फिल्म बनी जिसने चार वड्डे अवार्ड बैस्ट फिल्म बैस्ट डायरेक्टर बैस्ट एक्टर बैस्ट एक्ट्रेस अपने नाम लिखा। एस डी बर्मन का संगीत लता मंगेशकर दे गाए गाने अज भी लोगों की जुबान ते रह गए ने। इन्ना नहीं नहीं इस ऑस्कर के लिए भी भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया। टाइम मैगजीन ने भी इस बॉलीवुड की टॉप क्लासिक फिल्मों की लिस्ट शामिल किया।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.
10: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें DigiCellPacific.com.

0: टाटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।

से जो बरसो पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

किसने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तोड़े को ला रहे हैं।
1: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
2: Saturday 15th August 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन में
2: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat tickets at Premier Tickets।
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पे।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
0: सत श्री अकाल, मदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थोड़ा प्रधानपति। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तोड़े को ला रहे हैं।
1: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
2: Saturday 15th August 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन में
2: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat। Tickets at Premier Tickets।

से खत्म मेरी जान पे, ना दिन का पता बस इतना पता कि मैं तो गया।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरची निव्या के साथ, और मंडे का दिन है तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी मंडे। आई नो हैप्पी और मंडे एक ही लाइन में, दोनों चीजें आप अग्री नहीं करोगे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मंडे आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन है जो सबसे ज्यादा काम आता है। जी हाँ, मतलब मंडे पे जो आप चीजें कर लेते हो ना, वो आपको फोकस्ड और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम करती हैं, प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम करती हैं। सो मंडेज आर नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट कि हमारा नजरिया थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर हम उस नजरिए को सुधार लेंगे और अगर अपने काम से मोहब्बत हम कर लेंगे तो हमें मंडे बहुत अच्छा लगेगा। एंड क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, और जो बिजनेस वुमेन होते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि फाइनली फिर वापस आकर सबके सब लोग अब काम करने वाले और मुझे सक्सेसफुल बनाने वाले। That's what happens. So, आइए हैप्पी मंडे के साथ साथ अब जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेल, वो इंपॉर्टेंट चीज है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, यानी कि एक ऐसा रिचुअल जो हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमें हेल्दी रखता है, प्रोडक्टिव बनाता है और बेसिकली हमें कामली सारे डिसीजन लेने में मदद करता है। तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ जिसका नाम है काफिराना।

जी दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, मतलब प्रोग्राम के शुरू होते ही रुलाने का इरादा है क्या? वेल, ये गाना सेंटी लगता है, बट वैसे सेंटी है नहीं। मतलब इसमें बात जो है वो प्यार की हो रही है, मोहब्बत की हो रही है। ऐसा नहीं है कि दिल टूट गया है या कुछ ऐसा हो गया, नहीं। मतलब ये अनरिक्वेटेड लव हो जाता है ना, जो ऑफकोर्स एक तरफा मोहब्बत है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और एक तरफा मोहब्बत की ताकत तुम क्या जानो, रमेश बाबू जी। हाँ, और आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है, शायद ये डायलॉग ऐसे तो नहीं था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वेल ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें थोड़ी फेर बदल तो चलती है भाई, क्रिएटिविटी का नाम ही है ये। जी हाँ, आइए बात करते हैं मौसम के बारे में। जी हाँ, मौसम यानी कि टेम्परेचर क्या कह रहा है, मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस, और अभी की अगर बात की जाए तो 19.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 18.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, इसी के साथ अगर बात की जाए बारिश की तो 10% चांसेस थे बारिश के, जो कि एकदम ना के बराबर था, मैंने पहले ही बता दिया था। रात के टेम्परेचर की अगर बात करें तो ठंडक जो है वो होगी काफी, 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो रहने वाला है। और यहाँ पर आज के मौसम का हाल तो हो गया, जरा एयर क्वालिटी की बात कर ली जाए तो वो भी एकदम फेयर है, यानी कि एकदम मजेदार है। चलिए अब कल के बारे में बात करते हैं, यानी कि मंडे और ट्यूसडे के बारे में। सो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर विद नो, ऑलमोस्ट नो चांसेस ऑफ बारिश एंड सनी माहौल एकदम रहने वाला है, मतलब एकदम सूरज जो है वो निकलने वाला है। और ट्यूसडे की अगर बात करें तो उस दिन भी ऐसा ही रहेगा, बल्कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर एंड नो चांसेस ऑफ बारिश। जी हाँ, और अगेन बढ़ चढ़कर आप बाहर निकलिए और सूरज की किरणों को अपनी बॉडी पर पड़ने दीजिए, बिकॉज अच्छे से विटामिन डी कंज्यूम करने का टाइम है अगले 2 दिन। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की

0: Road, Mount Gravatt, ample parking. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मौसम का हालचाल भी बता दिया है, अब जरा बात करते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि आपकी फरमाइशों की बात अगर हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही कर लें तो मजेदार फरमाइशें जल्दी से आनी शुरू हो जाती है और हमारे प्रोग्राम में एक वाइब बन जाती है। और वाइब बनना जरूरी है क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही इवनिंग वाइब है। मतलब आपके जो हैं वो ऐसे होते हैं कि क्या क्या क्या तारीफ करूं मैं उनकी। जी हाँ, तारीफ करूं क्या उनकी। जी हाँ, मतलब गाऊंगी नहीं, डोंट वरी, गाऊंगी नहीं। सो यहां पर आपको अगर कोई गाना पसंद है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अजीज है और आप चाहते हो कि वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, पार्ट बने, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और एक नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं अपनी फरमाइश हमें, हमारी तरफ से एक और मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार जेनिविया के साथ। दोस्तों, आपकी फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपको चक्कर आ सकते हैं। जी हाँ, बट ऑल इन अ गुड वे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि चक्कर बट गुड वे में कैसे आ सकते हैं, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वेल वेल वेल, आई एम गोना टॉक अबाउट अ स्पाइडर मैन द ब्रांड न्यू डे, जो कि रिलीज हो चुकी है। एंड कैन यू गेस कितनी बड़ी ओपनिंग स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे को मिली है? जी हाँ, चलिए ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड का वक्त देती हूँ, आप गेस कर सकते हो। गेस कीजिए, मतलब कितना ही गेस कर सकते हो आप, राइट? कीजिए। चलिए ठीक है, दे दिया मैंने अब आपको वक्त, और अब बताने का वक्त मेरा हो गया कि क्या ओपनिंग की है। सो $927 मिलियन या $927 मिलियन की ओपनिंग मिली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को। जी आप लोग बोलोगे कि अरे भाई, ये तो ऑलमोस्ट $70 मिलियन कम बच गए, ये तो $70 मिलियन और मिल जाते तो $1 बिलियन की ओपनिंग मिल जाती। या मतलब पूरी की पूरी कलेक्शन जो है वो मतलब लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं होती है मूवीज की, और स्पाइडरमैन को लिटरली मिली है ये ओपनिंग। एंड कैन यू गेस कि ये अब सबसे ऊपर पहुंच गई है या सेकंड नंबर पर है या थर्ड नंबर पर? चलिए, ये भी गेस क्यों ही करवाना आपसे, मैं खुद ही बता देती हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है अब सेकंड आ गई है, लेकिन फर्स्ट अभी भी 2019 में रिलीज हुई एवेंजर्स एंड गेम है। कैन यू गेस उसकी ओपनिंग कितनी थी? या गेस कीजिए, क्योंकि वो गेस करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन वॉट एन ओपनिंग। जी हाँ, मैंने मूवी देख ली, आई एम गोना डू द रिव्यू, फुल रिव्यू फॉर यू। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कह सकती हूँ कि शायद आपको जो लास्ट स्पाइडरमैन मूवी आपने देखी थी उसके बाद ये उतनी अच्छी ना लगे, थोड़ी कम अच्छी लगे। या इट्स अ गुड मूवी, अगेन इट्स अ गुड मूवी। ये मार्वल और सोनी दोनों मिलके बनाते हैं, सो ऑफकोर्स इट इज अ गुड मूवी। बट कंपेयर टू द प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवी, हाँ, उस मामले में थोड़ी कम पड़ सकती है। जी हाँ, और ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं। और बाकी मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि फुल रिव्यू वो तो मैं करने वाली हूँ, लेकिन $927 मिलियन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द यू नो कास्ट एंड क्रू एंड द प्रोडक्शन कंपनी, ऑफ कोर्स टू सोनी, कि इतना माल छाप लिया है आपने, इतना पैसा छाप के कहाँ जाओगे आप, थोड़ा बांट ही दो। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
2: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों, एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता है व्हाई आर यू लेट। जी हाँ, एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता है व्हाई आर यू लेट, तो स्टूडेंट सामने से कहता है बिकॉज ऑफ द साइन बोर्ड। जी हाँ, तो टीचर कहता है व्हाट साइन, तो स्टूडेंट कहता है स्कूल अहेड गो स्लो। जी हाँ, अब बात तो सही है क्योंकि स्टूडेंट को जितनी समझ थी उसके हिसाब से उसने सही समझा। आपने देखा ही होगा कि जहां भी स्कूल होता है उसके पास लिखा होता है स्कूल अहेड गो स्लो। अब ये चीज बाकी लोगों के लिए होती है लेकिन स्टूडेंट को खुद ही अगर ये दिख जाए और इसकी वजह से वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाए और लेट हो जाए स्कूल के लिए, तो इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है, उस साइन की गलती है, राइट। और टीचर को उसे ब्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद टीचर ये सोच रहा है ओ माई गॉड, ये मतलब क्या ये मैट्रिक्स था जो इस बच्चे ने क्रैक कर लिया। मतलब लिटरली अगर कोई लेट हो रहा है बच्चा तो वो सीधा आके बोल सकता है कि यू नो व्हाट, आई एम लेट बिकॉज ऑफ द साइन एंड साइन सेड कि स्कूल अहेड गो स्लो। तो हम धीरे धीरे चल रहे थे भाई, हमने नहीं कहा है, साइन ने कहा है। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, साइन की प्रॉब्लम है। हटाना है तो साइन को हटाओ, फिर हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ, आखा दे पटोरे, सुरमा बटोरे, ये तो बाद में बात हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत ही काम की है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में जानें। सो सैम ऑल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी के ओनर हैं, उन्होंने एक चीज कही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। हमने आज दिन तक एक ही चीज सुनी थी कि AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, बट उन्होंने इसके अलावा कुछ कहा है जो कि हमें सुनने की और ध्यान से प्रोसेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा है कि AI won't replace humans, but humans who use AI will replace those who don't. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि AI won't replace humans, but humans who use AI will replace those who don't. So basically, हम लोगों को अपने आप को AI को चलाना सिखाना है, AI को बनाना सिखाना है, और इसलिए नहीं कि वो हमें रिप्लेस कर सके या हमारे आजू बाजू वाले लोगों को रिप्लेस कर सके, इसलिए ताकि AI की मदद से ह्यूमंस जो हैं वो उस लेवल पर ग्रो करें कि उसके बाद उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं रहे। जी हाँ, ऑफकोर्स कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और वो लिमिटेड ही रहेंगे, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में कर सकते हैं अगर हम AI का इस्तेमाल करना जान गए। सो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, जो कि मुझे भी लगता था काफी टाइम तक, लेकिन फिर मुझे एक चीज समझ आ गई कि AI का यूज अगर करना ह्यूमन सीख जाए अपनी बेहतरी के लिए, तो AI विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस ह्यूमंस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ह्यूमंस विल बी एबल टू डू थिंग्स जो कि कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ, और जो आज दिन तक हुई ही नहीं थी, और जो एक बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन होगा हर चीज को करने का। सो जैसे मैंने कहा कि AI won't replace humans, but humans who use AI will replace those who don't. So, अगर आप लोग AI को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तब आपके लिए खतरा हो सकता है। खतरा आपको डायरेक्ट AI से नहीं होगा, AI को इस्तेमाल करने वाले ह्यूमन से होगा। जी हाँ, दैट इज द रियलिटी एंड आई थिंक इट्स मंडे एंड वी नीड टू नो इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत भजत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
6: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
5: Acha? Wo kya?
6: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
5: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
6: Are, receivers ab cash pickup, bank transfer ya mobile wallet mein bhi le sakte hain money.
7: Download kijiye Lotus Foreign Exchange online. au.lotusfx.com app aaj hi visit kare.
8: जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में जिसके बारे में हम बात तो करने ही वाले हैं लेकिन यहाँ पर सरा सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडियन के बारे में जिनका जन्मदिन है और उसके बाद सीधा हम खबरों की तरफ रुख करेंगे और दुनिया में क्या हो रहा है जो कि चल रहा है बहुत कुछ उसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले सुनील ग्रोवर जिन्होंने कभी गुत्थी कभी कितने सारे कैरेक्टर्स से उन्होंने आपको एंटरटेन किया है और द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो ऑन नेटफ्लिक्स पे वो आपको नजर आते हैं अलोंग विद कपिल शर्मा आपको एंटरटेन करते हैं कपिल शर्मा के बाद और इनफैक्ट उनके अलावा अगर कोई कॉमेडियन है जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है इंडियन ऑडियंस में और फिर चाहे वो इंडियन हो या कोई भी हिंदी समझने वाली ऑडियंस हो वो सब सुनील ग्रोवर को प्यार करते हैं ही इज सच अ गुड एक्टर एक्टिंग में भी ये करते हुए बीच में नजर आते हैं मूवीज में नजर आते हैं और यहाँ पर आज हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे सबसे पहले जी हाँ सुनील आपको हमारी तरफ से और रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और इतना ही कहना चाहेंगे जो आप करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत काम है मतलब आप लोगों को हंसाते हैं उनको उनके स्ट्रेस से दूर रखते हैं और उनकी मुश्किलात को भुलाने में हेल्प करते हैं और ये सारी की सारी चीजें आपकी कॉमेडी की वजह से होती है आपकी एक्टिंग की वजह से होती है एंड पीपल एंड वी लव यू जी हाँ ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए ऐसे ही हमें हंसाते रहिए ये दुनिया के केओस से हमें दूर रखिए और ये साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहे अच्छा रहे खुशनुमा रहे हेल्दी और वेल्दी आप रहें और साथ में खुशियां आपकी जिंदगी में बनी रहे यही हमारी दुआ है इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन खूबसूरत है

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, रुख करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले ट्रंप के ऐलान पर, ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, सोने का हाल है क्या, आइए जरा जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए सैन्य हमले को टालने के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार यानी कि मंडे को 3 अगस्त को 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन की मांग बढ़ने से सोना समेत अन्य कीमती धातुओं में तेजी दर्ज हुई है। ब्रेंट क्रूड $4.8 यानी कि 4.64% टूटकर $83.85 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड $4.1 यानी कि 4.74% की गिरावट के साथ $80.66 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। जी हां, दूसरी ओर सोने की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई। ट्रंप के फैसले से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं कुछ कम हुई हैं, जिससे निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बना है। जी हां, स्पॉट गोल्ड 0.7% की बढ़त के साथ $4,067 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.9% चढ़कर $4,065.60 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। तो ये तो मार्केट का हाल है। ब्रेंट क्रूड और सोने की क्या हालत है? वेल, अभी ट्रंप ने कहा था एक दिन पहले, दो दिन पहले, कि कैसे वो ईरान पर ऐसा भयंकर हमला करने वाले हैं कि उसके बाद वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमला होने वाला है। और फिर उसके बाद वो एकदम से कहते हैं कि ओ माय गॉड, आई एम नॉट गोना डू दैट, मैंने अभी के लिए टाल दिया। चलिए, तो हम ट्रंप रोस्टिंग सेशन में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट द थिंग इज कि इससे यानी कि एटलीस्ट थोड़ी सी अच्छी खबर आई है, तो उससे मार्केट भी कुछ अच्छी नजर आ रही है, और दूसरा जो तेल के बढ़ते हुए प्राइजेस हैं उससे भी थोड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इसी के साथ वाइल्ड फायर्स जो कि यूरोप को परेशान किए हुए हैं बहुत ही बुरे हाल से, उनसे और भी ज्यादा खबर जो है वो बुरी आई है। जी हाँ, मतलब कि ग्रीस से एक बहुत बुरी खबर आई है। पहले स्पेन, अब फ्रांस, अब ग्रीस की हालत जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। सो ग्रीस में जो वाइल्ड फायर्स है वो तो बहुत ज्यादा भड़की रही है, लेकिन वहां पर फायर फाइटर्स जो है जो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से काफी सारे फाइटर्स ने जो है अपनी जान से हाथ धो लिया है। जी हाँ, यहाँ पर ग्रीस में आग बुझाने के दौरान दो हेलीकॉप्टर भी टकरा गए और पायलट दो लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, ग्रीस यूनान में जंगल की आग बुझाने के अभियान के दौरान रविवार को दो हेलीकॉप्टरों की हवा से में टक्कर हो गई। इस हादसे में डेनमार्क के एक पायलट और ग्रीस की फायर सर्विस के एक संपर्क अधिकारी यानी कि लायजन ऑफिसर की मौत हो गई, जबकि दूसरे ब्रिटिश पायलट और ग्रीक कोऑर्डिनेटर मामूली रूप से घायल हो गए। यह हादसा राजधानी एंथेस से करीब 65 किलोमीटर पश्चिम में उस समय हुआ जब दोनों हेलीकॉप्टर आर्टिका बोयोटिया सीमा पर लगी भीषण जंगल की आग बुझाने के अभियान में जुटे थे। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर दूसरे से टकराता दिखाई देता है। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो पास की खाई में गिर गया, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर आपातकालीन लैंडिंग करने में सफल रहा। ग्रीक फायर सर्विस के अनुसार दुर्घटना के बाद एक हेलीकॉप्टर के दोनों चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार दोनों कर्मियों को बेहोशी की हालत में निकाला गया। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि सप्ताह ग्रीस में भीषण जंगल की आग के चलते बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पोर्टो, जमनो, पसाथा, पोकिडा, मेगारा और कैफालोनिया समेत कई इलाकों से पिछले 72 घंटों से 500 से अधिक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों वहीं गाजा से भी एक और बुरी खबर है, मतलब जहां का बवाल संभल नहीं रहा है, वहां का तो नहीं संभल रहा है, लेकिन जहां का संभलने का थोड़ी सी गुंजाइश हो रही थी वहां का भी नहीं संभल रहा है। जो आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा क्या कहावतों में बात कर रही हूँ, वेल कुछ दिन पहले हमें ऐसा लगा था कि एटलीस्ट और जगह पर तो लड़ाई की आग भड़की ही हुई है, केओस चल ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट गाजा में जो है वो कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर से यहां पर गड़बड़ हो गई है। जी हाँ, हथियार छोड़ने को लेकर हुए समझौते के बावजूद गाजा पर हुआ हवाई हमला। जी हाँ, गाजा पट्टी पर इसराइल ने लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। फलस्तीनी अधिकारियों के अनुसार हमले गाजा सिटी, खान यूनिस और दीर अल बला के रिहायशी इलाकों पर किए गए। गाजा के सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने बताया कि इजरायली सैन्य विमानों ने कई आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना यानी कि IDF ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य गाजा में सक्रिय सैन्य ठिकानों और हमास के लड़ाकों को निशाना बनाना था। सेना के मुताबिक इन हमलों में हमास के 2 लड़ाके मारे गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले हमास ने प्रस्तावित निरस्त्रीकरण योजना को स्वीकार किया था। इस योजना के तहत हमास अपने हथियार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को सौंपेगा। उधर इसराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने रविवार को स्पष्ट किया कि गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि हमास अपने हथियार नहीं छोड़ता है तो गाजा पट्टी को पूरी तरह इसराइल के नियंत्रण में लाना जरूरी होगा। सो बेसिकली यहां भी कुछ भी संभलता हुआ नजर नहीं मुझे आ रहा है।

जी दोस्तों, आपने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा था कि ट्रम्प एक सोशल मीडिया साइट जो है या ऐप निकालेंगे और उसके बाद आपको उसके अर्ली एक्सेस के लिए पे करना होगा और आप विलिंगली उसके लिए पे करना चाहेंगे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वेल, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प के जितने भी ट्वीट्स आते हैं वो एक्स पर नहीं आते हैं, बल्कि ट्रुथ सोशल पर आते हैं। एंड ट्रुथ सोशल ट्रम्प की ही कंपनी का बनाया हुआ एक ऐप है जिस पर ट्रम्प खुद ही ट्वीट करते हैं, और फिर अगर आपको उनका ट्वीट देखना है तो आपको ऑफकोर्स उसे चलाना होगा। लेकिन अब ट्रम्प के ट्रुथ सोशल ने लॉन्च किया है सब्सक्रिप्शन फॉर अर्ली एक्सेस। आप लोग बोलोगे, अरे नहीं चाहिए हमको अर्ली एक्सेस, हमको लेट भी मिलेगा तो चलेगा, लेट भी मिलेगा, हमको एक्सेस चाहिए ही नहीं उस ऐसी जगह का जहां पर ट्रम्प कुछ भी करते हैं। कभी वो अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहते हैं, कभी वो अपने आप को अल्टस कहते हैं, और कभी वो अपने आप को लिटरली, मतलब बेसिकली वो इंसान अपने आप को बहुत कुछ कहता है, लिटरली। और यहां पर जो है आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये सब चीजें अर्ली देखनी है बाकी लोगों से पहले तो आपको पे करना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे कि अरे भेजा हिल गया है क्या तुम्हारा, हमको लेट एक्सेस मिलेगा वो ही ठीक है, मतलब वो भी नहीं चाहिए बेसिकली हमें, पर वो हमें मिल जाएगा तो कोई चक्कर की बात नहीं है, पर अर्ली के लिए हम पैसे तो नहीं दे रहे। सो ट्रुथ सोशल ने लॉन्च किया है अपना ट्रुथ एपीआई, अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस that gives users early access to post from high profile accounts including US President Donald Trump. So basically ikalota high profile account jo usme hai wo hai Mr. Trump ka. Do you want the early access of Truth Social? Yeah, you tell me about it. Yahan par ek aur gana aap sab ke liye.

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर ट्रंप की ट्रुथ सोशल लेकर आई है एक सब्सक्रिप्शन वाला मीडियम। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन। आप लोग बोलोगे कि ऑफ कोर्स हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कितने की होने वाली है। इट कैन कॉस्ट समवन या इट कैन कॉस्ट समवन 1 लाख, यानी कि $100,000 पर मंथ। आप लोग बोलोगे कि मतलब नीवेश शर्मा, तुमने पहले भी कहा, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि कोई इतना क्यों पे करेगा ट्रुथ सोशल की अर्ली एक्सेस की सब्सक्रिप्शन के लिए। वेल वेल वेल, एक चीज है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, आपको इंटरेस्ट रहता है मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो शायद आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लग सकती है कि क्यों इसका प्राइस जो है वो इतना रखा गया था और क्यों लोग जो है वो इसे खरीद सकते हैं। सो बेसिकली $100,000 पर मंथ के बाद जो है ये सर्विस दे सकता है। इट इज एमिंग फॉर द पीपल एट ट्रेडिंग फर्म एंड अदर सब्सक्राइबर्स, जो कि रियल टाइम अलर्ट्स और पोटेंशियली मार्केट मूविंग पोस्ट पर नजर रखे हुए थे। मतलब जितनी भी मार्केट को में क्या हो रहा है, कुछ भी नया हो रहा है, जल्दी आपको जो है उसका एक्सेस जो है वो मिल सकता है इस जगह पर, ट्रुथ सोशल पर। और इसीलिए जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये चीज थोड़ी सी खास हो सकती है। बट स्टिल $100,000, आई मीन इट्स इनसेन, आई वुड से। या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sat Sri Akaal, madam, namaskar, dosto, main haan toda Pratap Patel. Ek baar phir Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe hain.
3: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
4: Saturday 15th August 6:30 PM.
2: Milde hai ji Brisbane vich
4: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज शेनिविया के साथ। दोस्तों, जब भी बात होती है प्यार की और प्यार के लिए बनाए कुछ स्पेशल सी चीज की, तो हमेशा ताजमहल की बात जो है वो सबसे ऊपर होती है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी वाइफ, अपनी पत्नी और अपनी मोहम्मद मुमताज के लिए ताजमहल को बनाया। जी हाँ, अब अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ताजमहल एग्जैक्टली क्या है, तो ये एक मकबरा है, मतलब वहां पर कब्र है, जी हाँ, मुमताज की। सो अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ साइन ऑफ लव, बट या फॉर हिम इट इज अ साइन ऑफ लव। नाउ हम हमेशा इसी के बारे में बात करते, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया, तुम मेरे लिए क्या करोगे। बहुत सारी जो वाइफ्स है, जो गर्लफ्रेंड्स हैं, वो अपने हस्बैंड्स या बॉयफ्रेंड्स को यही कहती है। लेकिन यहाँ पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए इतनी स्पेशल चीज की, उनकी मेमोरी में इतनी स्पेशल चीज की कि मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जो है वो यहाँ पर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर एक व्यक्ति ने 7000 पेड़ लगाए अपनी बीवी की याद में। और सिर्फ पेड़ नहीं लगाए बल्कि गिटार शेप्ड एक जंगल बनाया। जी हाँ, आपने सही सुना। सो पेड्रो मार्टिन उरेता, जिन्होंने अपनी वाइफ की ये चाहत जो है और ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की, एंड दैट टू इन अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे। जी हाँ, अपने बच्चों की मदद के साथ उन्होंने 7000 पेड़ लगाए। उन्होंने क्रिएट किया एक गिटार शेप्ड फॉरेस्ट अक्रॉस अर्जेंटीनाज पंपास। जी हाँ, पंपा इलाके में जो कि अर्जेंटीना का है, वहां पर उन्होंने एक लिविंग ट्रिब्यूट जो है वो अपनी वाइफ को दी उनकी याद में। एंड दैट इज सो सो सो सो सो स्पेशल. ये ना मतलब आप इस खूबसूरत से गिटार शेप जंगल को देख सकते हो अगर आप प्लेन से वहां पर ट्रैवल कर रहे हो. आप सैटेलाइट से भी इसको देख सकते हो और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो नजर आता है. आजू बाजू पूरी तरह से हरियाली है, यहाँ भी हरियाली है लेकिन बीच में पेड़ लगा हुए हैं और वो पेड़ जो है वो गिटार शेप्ड है. मतलब क्या खूबसूरत चीज है. आई मीन ज्वेलरी इज गुड, बहुत सारे और गिफ्ट बैग्स, यू नो ड्रेसेस, दे ऑल आर गुड थिंग्स. बट अगर ऐसी ट्रिब्यूट और ऐसा कोई प्यारा सा जेस्चर अपने पार्टनर के लिए करे तो मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट मोस्ट स्पेशल बिकॉज इट्स गोना लिव ऑन. जी हाँ, मतलब ये मटीरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं इंसान के साथ, बट ये जंगल इट विल स्टे लाइक दिस. एंड लोग जब भी इस जंगल को देखेंगे पेड्रो को याद करेंगे, उनकी वाइफ को याद करेंगे और उनकी रोमांटिक स्टोरी को, खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी को याद करेंगे. Isn't it beautiful? जी हाँ, यहाँ पर एक गाना अब आपके लिए जो कि मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है और इसकी फरमाइश हमें थोड़ी देर पहले ही आ गई थी लेकिन हम इसे प्ले नहीं कर पाए थे. अब हम इसे प्ले कर रहे हैं. ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से. गाने का नाम है आई नहीं फ्रॉम द मूवी स्त्री 2. नाउ ये गाना जो है वो हमने इतना प्ले किया है अपने इस प्रोग्राम में कि अब हम पूरी जिंदगी भी प्ले ना करें तो भी चलेगा. बट द थिंग इज ये गाना है बहुत जबरदस्त और ये गाना मेरे लिसनर्स को भी बहुत पसंद है इंक्लूडिंग मी. जी हाँ, सो थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए, हमेशा प्यारे प्यारे गाने हमारे इस प्रोग्राम में भेजने के लिए. और ये रहा आपका ये जबरदस्त सा गाना जो कि खूबसूरत से ज्यादा मस्ती वाला है और अगर आप इसके लिरिक्स पे जाएंगे देन यू विल बी लाइक व्हाट इज ही सेइंग. बट या इट्स फन.
7: Devo pa chalavat ki avat avat.

खतरनाक गाना बनाया है, क्या खतरनाक गाना बनाया, मतलब क्या कहूँ मैं फहीम अब्दुल्ला को। इट्स बीन अ वाइल हमने इनके बारे में बात की है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये रूल कर रहे थे, अभी भी ये रूल कर रहे हैं। बेसिकली अभी भी सैयारा का कोई तोड़ आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही दिलचस्प चीज होने वाली है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, एंड इट्स अ एनुअल इवेंट जो कि है पर्सिडीज मेट्योर शार। जी हाँ, पर्सिडीज मेट्योर शार, और ये मेट्योर शार जो है वो अगस्त में ही आता है हर साल। जी हाँ, सो ऑफकोर्स ये पीक कब करने वाला है? जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 12 अगस्त को पीक करने वाला है, और 12 अगस्त को ये पीक करेगा। और इसके साथ एक फायदेमंद चीज ये है कि न्यू मून यानी कि अमावस्या, मतलब कोई चांद आसमान में नहीं होगा, जिसका फायदा जितने भी लोग मेट्योर शार को देखना पसंद करते हैं उनको पूरा पूरा मिलने वाला है। जी हाँ, मतलब मेट्योर शार जो है, और खासकर पर्सिडीज मेट्योर शार जो है, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि

एंड दिस इज अ टाइम जब ये शुरू होते हैं, मतलब अब जो ये वक्त शुरू हो रहा है अगस्त से, अब ये सारे के सारे जबरदस्त मेटियोर शार जो है वो शुरू हो जाएंगे एंड दे आर गना बी हियर टिल यू नो जनवरी और फरवरी तक. दिसंबर में भी एक बहुत ही जबरदस्त सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटियोर शार है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पर्सिडीज मेटियोर शार का मजा उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा. 12th of August याद रखिए, अगर आप भी स्पेस, चांद, सितारे, स्टार गेजिंग और नाइट स्काई के फैन हैं और ऐसी एक्टिविटीज के फैन हैं, ऐसे खूबसूरत नजारों के फैन हैं, तो आपको 12 अगस्त को बिल्कुल नहीं भूलना है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है.

0: बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा रुक करते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो कि लिटरली सबसे ज्यादा फेवरेट है हमारा इन ऑल द सेंसेस। जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स द ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट। मतलब जो पुराना है वही खास है, क्योंकि वो प्योरिटी से भरा है, वो उन खूबसूरत चीजों से भरा है जिनकी आज हमें किल्लत है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि लिटरली हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में से एक है। एंड गेस व्हाट, ये गाना जो है वो सबसे पहले मैंने सुना था तब जब मेरी एक बहुत ही खास लिसनर ने इसे फरमाइश किया था, और तब से बस ये मेरा फेवरेट गाना बन गया। नॉट जस्ट मेरा, उसके बाद मैंने भी आगे बहुत सारे लोगों को सुनाया एंड दे वर लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नाउ गाने का नाम है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, एंड इट्स अ ओरिजिनल वर्जन बाय SB जॉन्स। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाया हुआ है उन्होंने, और सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो गया, मतलब पुरानी बातें भी होंगी, पुराने गाने भी होंगे, और आपकी फरमाइशें भी होंगी जो कि पुराने गानों से रिलेटेड ही होंगी। तो सुनते हैं इसको सबसे पहले।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अब आपको सुनाते हैं एक बड़ी ही जबरदस्त सी स्टोरी जो कि ऋषि कपूर ने खुद सुनाई है। जी हाँ, अब अगर आप लोग जानते हो कपूर खानदान को तो आपको तो पता ही होगा कि कपूर खानदान हमेशा से हमें बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स देता आया है। फिर चाहे हम बात करें पृथ्वीराज कपूर की, फिर चाहे हम बात करें राज कपूर की, फिर हम बात करें शमी कपूर की, शशि कपूर की, ऋषि कपूर की, ये कितने ही कपूर्स की हम बात करें, सबके सब एक से बढ़कर एक, मतलब और कितने जबरदस्त नाम जो हैं इन सब के रखे गए। तो जब एक इंटरव्यू के दौरान शशि कपूर से नहीं बल्कि ऋषि कपूर से पूछा गया कि सर देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, पृथ्वीराज कपूर, मतलब कितने ताव वाले नाम हैं, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, है ना, शशि कपूर, शमी कपूर, आपका नाम किसी ने चिंटू कैसे रख दिया? जी हाँ, अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ऋषि कपूर साहब का जो घर का नाम था वो चिंटू था, और जो रणधीर कपूर थे हैं, जो उनका घर का नाम है वो है डब्बू। सो डब्बू है रणधीर कपूर का नाम और ऋषि कपूर का नाम है चिंटू। तो जब उनसे पूछा गया कि इतने जबरदस्त नाम और बड़े बड़े नाम रखे गए तो आपका नाम चिंटू कहाँ से पड़ गया और डब्बू कहाँ से पड़ गया रणधीर कपूर साहब का, तो शशि कपूर नहीं ऋषि कपूर कहते हैं कि देखो ये तो बड़ी ही जबरदस्त सी कहानी है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि मेरे जो बड़े भाई हैं जो कि रणधीर कपूर हैं, जो कि मुझसे 5 साल बड़े हैं, जब वो स्कूल गए तो उन्होंने स्कूल में एक पहेली सीखी, एक रिडल सीखी, जो थी कुछ ऐसे कि बड़े से चिंटू मियाँ, नहीं छोटे से चिंटू मियाँ की बड़ी सी पूंछ, बड़े से चिंटू मियाँ नहीं छोटे से चिंटू मियाँ की बड़ी सी पूंछ, जहां जहां जाए चिंटू मियाँ, जहां वहां वहां जाए पूंछ। जी आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा फिर से एक बार बताओगी, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा फिर से बताया जाता है। छोटे से चिंटू मियाँ की बड़ी सी पूंछ, छोटे से चिंटू मियाँ की बड़ी सी पूंछ, जहां जहां जाए चिंटू मियाँ, वहां जहां वहां वहां जाए पूंछ। और ये सुई धागा था इस पहेली का जो आंसर था। तो उन्होंने ये नई नई रिडल सीखी थी, तो उन्होंने चिंटू उनके मुंह पे ऐसा चढ़ गया कि उन्होंने मेरा नाम, जो कि मैं उनसे 5 साल छोटा था, तो उन्होंने मेरा नाम चिंटू ही रख दिया। जी हाँ, मतलब मैं आज भी बोलता हूँ उसको कि तेरे को कोई और नाम नहीं मिला था तो कुछ और अच्छा नाम नहीं रख सकता था, इसीलिए मैंने रणबीर का कोई पेट नेम रखा ही नहीं है, कोई घर का नाम नहीं रखा है, रणबीर ही है उनका नाम। जी हाँ, क्योंकि मैं इस चिंटू नाम से बहुत परेशान रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जो दो गाने आपने सुने ये आपको क्या सिखाते हैं? Well, ये हमें ये सिखाते हैं कि हम लोग जिन गानों को जानते हैं, मतलब जो गाने हमें नॉर्मली सुनने को मिलते हैं, जैसे रफी साहब के गाने, जैसे किशोर दा के गाने, और जैसे और भी जबरदस्त जबरदस्त सिंगर्स हैं लाइक मुकेश, यू नो, आशा जी और किशोर दा, मतलब इन सब के गाने जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं. कुछ जो है वो बहुत ही लेजेंडरी है, दे आर कल्ट फेवरेट्स, मतलब हर कोई ऑलमोस्ट उन्हें जानता है और हर कोई उनका शौकीन भी है उनको सुनने का. लेकिन एक चीज जो ये दो गाने जो हमने आपके लिए प्ले किए हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजें, कुछ गाने, कुछ खूबसूरत आर्टिस्टिक वर्क्स जो हैं वो इतने ज्यादा लेजेंडरी हैं लेकिन उन्हें उनकी जो डिजर्व्ड पहचान है वो नहीं मिली. जी हाँ, फिर चाहे वो पहला गाना है तू जो नहीं है, जी हाँ, जो मैंने आपको पहले सुनाया, एस बी जॉन्स का वो गाया हुआ गीत है, एंड दैट इज द ओरिजिनल वर्जन, मतलब वो पहली बार गाया ही एस बी जॉन्स ने था. ये वाला गाना जो आपने सुना है इसको आपने किसी बॉलीवुड मूवी में भी सुना होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओ बॉलीवुड मूवी वाला जो है वो सबसे पहले गाया गया था, दैट इज द ओरिजिनल वर्जन. लेकिन ये ओरिजिनल वर्जन है जो कि तज़फ़्फ़र यानी कि तसव्वर खानम ने गाया है. दिया तसव्वर खानम ने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया है, एंड माइंड यू जो कि आपने सुनी है वो एक लाइव रिकॉर्डिंग की है. जी हाँ, दैट इज नॉट अ स्टूडियो रिकॉर्डिंग, मतलब ये लाइव एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने गाया था और इतना जबरदस्त गाया और क्या मतलब गाती थी. ये गाने हमें दिखाते हैं कि कभी कभार जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं वो छिपी ही रह जाती हैं, मतलब वो बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि है ये रेशमी जुल्फें आप सबके लिए.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल यानी कि ट्यूसडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है? वेल ऑफ कोर्स आपको मजे करने हैं, आपको फन करना है, आपको खुश रहना है, क्योंकि खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो केओस बहुत है दुनिया में। सोशल मीडिया थोड़ा कम चलाइए, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको काफी केओस मिल रहा है। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, लोग भाग के आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए। कोई अच्छा सा मीम पेज जो है वो फॉलो कर लीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती है। मतलब मीम्स देखिए, पढ़िए, सुनाइए और खुश रहिए। जी ऐसे के साथ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इस गाने का नाम है 14वीं का चांद हो। जी हाँ, यही गाना हम आपको सुनाने वाले हैं।

0: ser tu belleza.
1: Marihuana no sabe que yo soy el receptor.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इटली में नेपल्स के पास लगे भूकंप के जोरदार झटके, 26 लोग घायल। इटली के नेपल्स के पास ज्वालामुखी क्षेत्र कैंपी फ्लेग्रे में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर यह झटका पोजुओली और क्वाटो के बीच करीब 3 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। भूकंप के कारण भूस्खलन हुआ, चट्टानें गिरी और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दृश्य को स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार सामने आई आंग सांग सू की रेड क्रॉस प्रतिनिधि से की मुलाकात। म्यांमार की हिरासत में बंद पूर्व नेता आंग सांग सू की ने राजधानी में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के प्रतिनिधि से मुलाकात की। 2021 में सेना की सत्ता संभालने के बाद से ही नोबेल पुरस्कार विजेता सू की को लोगों की नजरों से दूर रखा गया है। ऐसे में बाहरी दुनिया से उनका संपर्क होना एक महत्वपूर्ण घटना है। पाकिस्तान ने विरोध प्रदर्शन की खबरें कवर करने वाली कई वेबसाइट्स पर लगाई रोक। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रही अशांति की बड़ी पैमाने पर मीडिया कवरेज के बाद पाकिस्तान ने कई न्यूज वेबसाइट्स पर रोक लगा दी है और डिजिटल सेंसरशिप बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय और क्षेत्रीय न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की खबरों के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यूजर्स के लिए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स तक पहुंच भी बंद कर दी गई है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। विश्वेश नेगी बने ईरान में भारत के नए राजदूत। भारत ने 2002 के IFS अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में दी है। विश्वेश नेगी ईरान में नियुक्ति से पहले नई दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वो जल्द ही ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचकर अपनी नई डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी संभालेंगे। आइए जुड़ते हैं आप खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। गुलवीर 10,000 मीटर रेस में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पांचवें दिन दो सिल्वर मेडल जीत लिए। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी के साथ भारत के कुल मेडल्स की संख्या 12 हो गई है, जिनमें 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया 80 मेडल्स के साथ नंबर 1 की पोजिशन पर बरकरार है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिक
3: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਜਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
4: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane, Saturday 15th August, 6:30 PM.
3: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ।
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: Fire Ants ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ, ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
6: और हम वापस आ गए दोस्तों, और नंबर है 04300031701 या 3279-1701 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ कार्यक्रम में कहना चाहते हैं, यू कैन डू इट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चलो एक और गीत सुनते हैं, फिर हम वापस आएंगे।
7: ओके, दिस वन इज बाय गुरदास मान।
6: ओके, इज कमिंग। नो नो नो, इज कमिंग। हरभजन मान।
7: हरभजन।

0: और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सेज टॉक्स विद ईरान आर अंडरवे एंड हैज डिस्क्राइब दिस एज अ लास्ट चांस फॉर तेहरान टू रीच एन एग्रीमेंट. एपी रिपोर्ट्स ट्रंप हैज हेल्ड ऑफ ऑर्डरिंग फेदर स्ट्राइक्स फॉलोइंग डिस्कशन विद गल्फ एलाइज. यूक्रेन फाइटिंग रिमेन्स इंटेंस इन द रशिया यूक्रेन वॉर. विद एपी रिपोर्टिंग रशियन glide bomb attacks on southern Ukraine, while Ukrainian drones have also struck inside Russia. United Nations, the Security Council is preparing another informal vote on 21 August in the contest to replace Antonio Guterres as UN Secretary General. Okay. Wow. Thousands of immigrants have attempted to enter the Spanish enclave of Ceuta from Morocco.
1: Mm.
0: Okay, that's for now.
1: Yep.
0: All right.
1: Okay.

0: आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चलो कुछ क्वेश्चंस है.
1: कुछ क्वेश्चंस है.
0: ओह दिस आई डोंट थिंक आई वांट टू से दैट ऑन रेडियो.
1: ओके
0: बट एनीवे ओके एक गाना मैं ढूंढ रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन नेल इट.
1: ओके
0: नाउ मे बी नेक्स्ट सॉन्ग आई विल प्रोबब्ली फाइंड इट. या
1: ओके
0: ओके

0: आ गया। जो गाना मैं चाहता हूँ बजाने के लिए दोस्तों वो आ गया मेरे दिमाग में,
1: दैट्स गुड,
0: दिल और दिमाग में।
1: लवली।
0: और कौन सा गाना है? एक गाना बहुत ब्यूटीफुल गाना है, चलो आपको सुनवा देता हूँ दोस्तों, शायद आपको भी अच्छा लगे। It's got some classical touch to it.

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी हम दिल दे चुके का गाना और दिल दे चुके सनम, सलमान खान और ऐश्वर्या राय और आई थिंक इस्माइल दरबार का इसमें संगीत, और बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी इतना अच्छा लगा होगा दोस्तों। और चले आगे बढ़ते हैं। और व्हाट टाइम इज इट? वी
1: स्टिल लॉट ऑफ टाइम, 24
0: मिनट हुए हैं, 8:00 और चलिए। और क्या विशाल, थैंक यू आपने कॉल किया, यू वांटेड टू हेल्प मी, तब मैं गाना मिल गया था मुझे लेकिन फिर भी विशाल के पास बहुत नॉलेज है गाना पर, तो थैंक यू विशाल। ऑलराइट, व्हाट यू प्लेइंग?
1: नथिंग इज सो क्लासिकल एज दैट।

तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और रिक्वेस्ट आया है मेरे पास, और रिक्वेस्ट है प्रेमा जी, आपने रिक्वेस्ट किया है इस गीत को, और सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी और तलत, फिल्म आदमी का गाना है, 1968 मूवी, सुनते हैं दोस्तों।

0: ओके कभी काल क्या होता है दोस्तों, हम ये बिजी हो जाते हैं और शायद कुछ देख नहीं पाते हैं. कभी कभी एक मैसेज आया था और आई डिडंट सी विनीज मैसेज अबाउट द सॉन्ग.
1: या समहाउ आई मिस्ड इट टू. सॉरी विनी, वी डिडंट मीन टू निग्लेक्ट यू इन एनी वे. With all the laughing and joking and the things you say, we keep laughing and laughing, and somehow I missed that one. I'm so, so sorry.
0: Yeah.
1: She asked for this. Let's go back.
0: Okay, here we go.
1: 837.

0: और कामयाब गाने की बारी है, जिसको हिंदुस्तानी फिल्मी गानों का सिरमौर कहा जाता है, सरताज कहा जाता है। और इस गाने के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये गाना रफी साहब को भी बेहद पसंद है, आपको भी बेहद पसंद है। फिल्म का नाम है बैजू बावरा। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले।
1: और हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। एंजॉय दिस सॉन्ग और लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गाया रफी साहब ने।
2: एवरीवन
1: नमस्ते,
2: हैव अ ब्यूटीफुल डे।
1: यस।
3: Thank you.

नमस्कार आदाब खैर मक्तम। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सुबह की लालिमा के साथ। लालिमा बोले तो जब सूरज हर का रेड होता है यार। देखिए हमारे साथ रहेंगे तो हिंदी में एकदम विद्वान पंडित हो जाएंगे। तो भाई तो इस सुबह के साथ सताक्षी आ गई है आपके लिए लेकर एक बार फिर से एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग वाला साथ। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो पर हाजिर हूँ मैं लेकर आपके लिए इट हैपेंस। आज सुबह एक बार फिर से कुछ गहरे जज्बात हैं, प्यारी सी बातें हैं। देखिए दुनियादारी हम करते नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है और हमारा बिल्कुल मन नहीं होता कि किसी न्यूज़ पर या किसी नेगेटिव इशू पर आपसे बात की जाए। यार सुबह का वक्त एकदम पॉजिटिव होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि सताक्षी सुबह सुबह कुछ न्यूज़ बोल दिया करो, कुछ ऐसा बोला करो जो दुनिया में चल रहा है। यार देखो तो सब बोल रहे हैं ना, मतलब जहां भी आप जाएंगे सिर्फ उन्हीं इश्यूज पे बात हो रही है। अगर हम दिन की शुरुआत भी उन्हीं सारे इश्यूज के साथ करेंगे, ठापेंस में भी वही पोथी पत्रा लेकर बैठ जाएंगे तो सुबह तो यहीं से खराब हो जाएगी ना। और मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं होता, इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल और वो बातें जिनको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते होंगे, है ना। तो आज भी ऐसी कुछ खूबसूरत बातों के साथ मैं हाजिर हूँ और चलिए एक और ट्रैक के साथ अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए, कहीं मत जाइएगा। इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिंसवानी 701 AM पर।

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप और शो की शुरुआत करेंगे उनके साथ जिनके लिए पल बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और बस हमारी दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में खुशियों की कोई कमी जिंदगी में कभी ना आने पाए, है ना। आपकी जिंदगी एकदम रफ्तार से आगे बढ़ती रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और इसी विश के साथ उन्हें भी विश कर दूं जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, सो शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयां। और यार कमाल कर रहे हैं आप, जब ना लोग कह रहे हैं कि ना बाबा हमसे शादी नहीं हो पाएगी या शादी को वो कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, आप उस दौर में शादी को निभा रहे हैं, दम तो है बॉस। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, सताक्षी को सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। यू नो, जब एक हंसता खेलता बढ़िया सा मुस्कुराता हुआ इंसान शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसे ना उसकी बैटरी को एक्चुअली चार्ज करने की जरूरत है। यू नो, हमारे आसपास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं हम उन्हें चार्ज करते हैं, हम उनकी बैटरी को फुल रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बेसिकली हम भी बैटरी से ही चलते हैं, हमें भी चार्जिंग की जरूरत होती है। और देखिए, चार्ज होने की ना सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, अपनी अलग अलग वायर्स हैं सबके। किसी को उसका फेवरेट फूड दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा और वो चार्ज हो जाएगा, उसकी बैटरी एकदम हाई हो जाएगी। कोई अपना फेवरेट म्यूजिक सुन के चार्ज हो जाता है, वो उसे गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, उस पर झूमने लगता है। कोई किसी का चेहरा देखकर चार्ज हो जाता है, उसकी बैटरी एकदम फुल हो जाती है सामने वाले का चेहरा देखकर, उसको बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से चार्ज होते हैं, आप उनके साथ थोड़ी देर बात कर लेना, उनकी बैटरी एकदम फुल हो जाती है। तो हो सकता है कि सामने वाले की जिंदगी में यार बहुत टाइम से ना वो खालीपन हो, कि कोई उससे बात करने वाला नहीं है, कोई एक ऐसा नहीं है जिसके साथ वो लाइट फील कर सके, हल्का फील कर सके, है ना जी। आइए एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए इसी बात पे, और आपकी बैटरी चार्ज करने के नाम ये अगला ट्रैक है। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इस मॉर्निंग. यू नो हमारी जिंदगी में ना तीन तरह के लोग आते हैं और हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो पेड़ों की पत्तियों की तरह होते हैं. बुरा समय आया ये पत्तियां झड़ जाती हैं, जरा सा पतझड़ आया और ये सूख कर गिर जाती है. इनके साथ मजा बहुत आता है. जब तक ये आपके साथ रहते हैं आपकी जिंदगी में हरियाली रहती है, मौसम बड़ा सुहाना रहता है. लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी का मौसम बदलता है ये पत्ते झड़ जाते हैं. बहुत कम टाइम के लिए ये आपकी जिंदगी में होते हैं. दूसरे होते हैं वो लोग जो डालियों की तरह होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, आपके साथ लंबे टाइम तक टिके रहते हैं. लेकिन एक वक्त एक पॉइंट तो ऐसा आता है जिंदगी में जब डाली कमजोर होती है और ये भी आपसे अलग हो जाते हैं. और तीसरे वो लोग होते हैं जो जड़ों की तरह डट कर खड़े रहते हैं. आपकी जिंदगी का चाहे कोई भी फेज आए ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ते. हाँ, तीन तरह के लोग हमारी जिंदगी में होते हैं. कैटेगरी वाइज ले लीजिए, रिश्तों के हिसाब से ले लीजिए. और अलग अलग रिश्ते, अलग अलग फीलिंग्स और अलग अलग साथ रहने का टाइम पीरियड. सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस. आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701.

ट्रिक का ये है आज का लास्ट ट्रैक, जिसके उस पार हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातें एक बार फिर से, और गाने, जी हाँ गाने तो हमारा साथ निभाते ही रहेंगे। सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सो वेलकम बैक मॉर्निंग के साथ पर आपका साथ निभा रही है सताक्षी रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. यू नो हम सब में ना हजार खामियां होती हैं, सब में ही होती हैं, और हमारी खामियों को लोग हमें गिनवाते भी हैं. तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, तुम्हें अपने अंदर ये सुधार करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. लेकिन बॉस एक शख्स हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है जो कहता है यार तुम्हें कोई खामी नहीं है, यार तुम कितने बेहतरीन इंसान हो, है ना. वो जो है वो, ये तो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है. लाइफ पार्टनर एक कमी कहता है, लाइफ पार्टनर को तो और 10 कमी नजर आ जाती है. माँ, माँ को अपना बच्चा जो है वो हमेशा परफेक्ट लगता है, एकदम परफेक्ट. कभी नहीं कहेगी माँ की यार तुम में ये कमी है, इसको तुम सुधारो, है ना. और जो लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे ना, वो उनसे भी बढ़ जाती है. सो यस, हम सबके जिंदगी में एक माँ ऐसी है जिसे अपना बच्चा हमेशा परफेक्ट लगता है. आपको पता है कि आपके अंदर हजार खामियां हैं, बट उसे वो भी नजर नहीं आती. तो चलिए सबकी माओ के नाम, ये अगला ट्रैक सुनते हैं अभी. सताक्षी के साथ सुनते रहिए, इट हैपेंस. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम.

वेलकम बैक इट हैपेंस में आप सताक्षी के साथ हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। सबसे बड़ा सुकून किस चीज में है? ये सबसे बड़ा सुकून कब मिलता है? कभी कभी लगता है एक लग्जरी लाइफ हो हमारे साथ सुकून मिल जाएगा। कभी कभी लगता है कि यार सब आसपास अच्छा हो सुकून मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब आप किसी और को खुश करने के लिए खुद को खत्म करना बंद कर देते हैं। आपको सुकून तब मिलता है जब आप ना कहना सीख जाते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तब मिलता है आपको सबसे बड़ा सुकून। तो आपने कभी फील किया है सुकून को? अगर किया है तो हमें बताइएगा जरूर। फिलहाल हम प्ले करते हैं आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। सुनते रहिए इट हैपेंस।